जिन मनस ते देवते कीए करतना लागी वार हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बेखे बेख खही माया मोह परम पैपुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

अहनसु सहज सुवई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय।

जो रते सह आपने तिन पावे सब कोए हौ वारी वन्या खनिये वन्या तो साहिब के नावे रहाव साहिब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते त्रिपत पाए

जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वसांझी वालता दे उपदेशक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो ओह चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तों पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। मालक जी आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन। आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते। सरबत संगत मिल करके उच्चारण करो जी।

चै जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने न पाया। मन मुख पाँव कमुए बिललाई, आवै जावै ठौर न पावै। दुख में दुख समाई, गुरमुख होवै सो अमृत पीवै। सहजे साच समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़ै।

जिन हर राख्या उर तारा, जिन हर मनव सिया से दर साचे, दर साचे सचियारा।

जिन हर राख्या उर तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै।

गुचै जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुरु सेवे किनै ना पाया, मन मुख पाऊं कमुए बिललाई, आवे जावे ठोर ना पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जी अनेक कर्म करै अधिकाई, वेद पढ़ै तै वाद वखाणै, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटै गुर शरणाई, जिन हर

जिन हर रख्या पुरतारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सह भंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरपौ निर्वैर

मोरच्छा निज कर दे करिए, सब बैर इनको आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो वर चाहो सो तुम ते माऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये। आब हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा। राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। तीन बांद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहें हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानद, भले बुरे की पीर पछाणद। चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा। जब आ करख कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आब आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत वेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेबना बावत बेदा। ताको कृपाहण अनुमानद, महामूढ़ कछ भेद न जानद। महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड़ भयो शंकर अकैठा। सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिदे उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता। जे आस तुझे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे। पुरख जवन पग परे देहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो,
ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्वठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्वठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ गए गए हो तोहारो द्वार बहें गए की लाज आस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छाड़ गए गए हो तोहारो द्वार बहें गए की लाज आस गोविंदास तोहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मनवजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जेना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जेना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित करस भागे करस भागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया
तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित हर अनहद बाजे आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुन दे पनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते बनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे

मंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंजे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया बेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया बेहरामत होई सत

जियो हर नाकिश मार पचाया गुरमुखानु परतीत है हर जियो मन मुख परम पुलाया भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो।

जियो हर नक शुमार पचाया गुरमुखानो परतीत है हर जियो मन मुख परम पुलाया हर जी एहे तेरी वडियाई भगतों की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई रहाओ भगतानू जम जो है न साके काल न नेड़ जाई केवल राम नाम मन वसया नमे ही मुक्त पाई रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुख नू परतीत न आवी अंतर लोभ सवाओ गुरमुख हिरदे शब्द न भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख भी का अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

तेरी तू एको पुरख विदाता हमे मार मनसा मने समाणी गुरके शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभु तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसया सबका सवरन हरा उन्ना की रीस करे सोब गुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने न पाया मन मुख पौंक मोए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़े जे अनेक कर्म करे अधकाई वेद पढ़े तैवाद बखाने बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पाज छुट्टे गुर शरणाई जिन हर मन वसया से दर साचे सचियारा उन्ना दिशोबा जुग जुग होई कोय न मिटन हारा नानक तिनके सद बलहारे जिन हर रखया और तारा जिन हर मन वसया से दर साचे सचियारा उन्ना दिशोबा जुग जुग होई कोय न मिटन हारा नानक तिनके सद बलहारे जिन हर रखिया और तारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ठाकुर बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइयै निष्ठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए। सब थाई हुई सहाय दसवां पातशाह।

गुरु इतिहास कलड़ी वर कथा विचार शब्द कीर्तन से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जी आंदे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बंदर प्रवान करनी यात्रा मस

आए न सकान तुझ कुन प्यारे, भेज न सकां कोए, सो कटल गुरु सेवी अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला तीजा, घर पहला तित की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, पुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तू राख ले हर जियो, हर नाख समार पचाया, गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाख समार पचाया, गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जिए तेरी वडियाई।

अचिंत काम कर है प्रभ तिन के, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन बसिया, सब काज सवारन हरा, हो न की रीस करे सो वे गुचे।

दुख में है दुख समाई, गुरमुख हो गए सो अमृत पीवे, सहजे साच समाई, बिन सतगुर सेवे जन मन सोडे, जे अनेक कर्म करे अधिकाई।

करें। को न मिटन हारा नानक तिनके सद बले हारे जिन हर राखे आउर तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

सजन सचा पात साहो सिर साहा दे साहो जिस पास बैठया सो ही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदीयम एक ओंकार सतगुर प्रसादम